0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, सीखना मानव के जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अपने रोज दिन के जीवन में कुछ न कुछ अच्छी चीजों को और कभी कभी तो बुरी चीजों को भी सीखते हैं। इस भांति हम अपने में जिन चीजों को सीखते और उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं, वही चीजें हमें सफलता की मंजिल की ओर ले चलती हैं, जहां हम अपने जीवन में संतुष्टि, आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 14वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार में यीशु स्वयं हमें अपने जीवन से सीखने का निमंत्रण देते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें, हम अपने जीवन में किन किन चीजों को सीखने की चाह रखते हैं? हमारा सीखना क्या हमें ईश्वर के लिए और दूसरों के लिए एक अच्छा मानव बनने को मदद करता है? हमारे जीवन में सीखने का क्रम किन किन बातों पर निर्भर करता है?
1: यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का।
0: श्रोताओं, ईश्वर के जीवनदायी वचन हमें अपने जीवन में नम्रता में बने रहने को मदद करें, क्योंकि नम्रता उस उपजाऊ भूमि की भांति है जहां हम किसी भी फसल की खेती सहज और सुगमता से कर सकते हैं। श्रोताओं, नबी जकराया के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें यरूशलेम की प्रजा को उल्लास में जय जयकार करने को कहता है, क्योंकि उसके पास मुक्तिदाता अपनी नम्रता में आने वाले हैं। वे राजा हैं, लेकिन दुनियावी राजा की भांति नहीं जो शाही अंदाज में अपने लोगों के पास आते हों, बल्कि वे गधे में सवारी करते हुए अपनी दीनता और अति विनम्रता में अपने लोगों के पास आते हैं। वे अपने बीच से राज शाही ठाठ बाट को दूर करेंगे, जो इफ्राइम के रथ और यरूशलेम में युद्ध के घोड़ों स्वरूप व्यक्त किया गया है। वे अपने लोगों के मध्य शांति की स्थापना करने आते हैं। श्रोताओं, आज का पहला पाठ हमारे लिए अपने ईश्वर के दिव्य मनोभाव को व्यक्त करता है, जो अपनी प्रजा के खातिर अपने में नम्र और दीनता में प्रस्तुत होते हैं। वे अपनी प्रजा जिसे वे भेंट करने आते हैं, अपने को उनके जीवन की परिस्थितियों और मनोभावों के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे अपनी सहजता से उनके संग भेंट कर आनंदित हो सकें। दुनिया का कौन ऐसा राजा है जो अपने लोगों की भांति ही अपने को निर्धन और शक्तिहीन बना लेता है? निश्चित ही यह और कोई नहीं बल्कि सर्वोच्च शक्तिशाली संपन्न यीशु ख्रीस्त हैं। यह मानव के खातिर उनकी दरिद्रता और शक्तिहीनता है, जो प्रेम और आज्ञाकारिता को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा हम सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतः वह जीवनदायी प्रभु हमें अपने मनोभावों को धारण करने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने मानवीय स्वभाव को जानने, समझने और उससे ऊपर उठने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। संत पौलुस कहते हैं कि हम सबों में मसीह का आत्मा निवास करता है, वह आत्मा जो ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया। उस आत्मा का हमारे जीवन में निवास करना हमें भी अपने जीवन की कमजोरियों से ऊपर उठने को मदद करता है। मानव शरीर के रूप में हम अपने जीवन में बहुत सारी अच्छाइयों के साथ कई बुराइयों को भी वहन करते हैं, जिसमें वासना एक प्रमुख बुराई है। यह वासना हमें शारीरिक सुख तक ही सीमित कर देती है, जो हम में से हर किसी नर और नारी में एक कमजोरी है। अपने शरीर की वासनाओं पर अपनी शक्ति से हम विजयी हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए हमें उस आत्मा से जुड़ने और उसे पहचानने की जरूरत है, जिसका पान हमें पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में कराया गया है। अपने शारीरिक वासना के कारण हम स्वयं अपने में गिरते और मर जाते हैं। वहीं इस वासना से ऊपर उठने हेतु हमें नम्रता में अपने मानवीय स्वभाव को स्वीकारने की जरूरत है कि हम अपने में कमजोर और क्षण भंगुर हैं, जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में टूटकर बिखर सकते हैं। अपने को ईश्वर के उस आत्मा के लिए खोलना हमें अपनी कमजोरी में मजबूती प्रदान करती है, जहां हम अपने मानवीय जीवन के रहस्य और सच्चाई को अच्छी तरह समझते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने यीशु को अपने पिता ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए सुना, क्योंकि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उन्होंने ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। यहाँ हम हमेशा की तरह मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त को हम सबों के लिए प्रार्थना करते हुए पाते हैं, जो हमारे लिए उनके प्रेम को प्रकट करता है, उसी भांति जैसे कि हम स्वयं उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हम सच्चे मन और दिल से प्रेम करते हैं। श्रोताओं, यीशु अपने पिता की शिक्षा को सुनने वालों और उसे अपने हृदय मन और दिल से ग्रहण करने वालों के लिए नम्रता, दीनता और दरिद्रता में बने रहने वालों के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। यह इसलिए कि यीशु ख्रिस्त दीन, दुखियों और गरीबों में स्वयं अपने हृदय के मनोभावों को पाते हैं। अपने पिता को धन्यवाद देते हुए यीशु ख्रिस्त आज हम सभी सुनने वालों को अपने मनोभावों से वाकिफ कराते हैं, यह कहते हुए कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। श्रोताओं, सीखना और सिखाना सिर्फ उसी के लिए संभव और एक तरह से आसान होता है जो अपने स्वभाव से नम्र और दीन है, क्योंकि ये दो गुण किसी भी व्यक्ति के हृदय के खुलेपन को व्यक्त करता है। अपने जीवन में सीखने के क्रम में भारी चीजों से हम स्वतः उब जाते हैं, लेकिन यीशु ख्रिस्त जिनसे बड़ा कोई भी शिक्षक हमारे लिए इस दुनिया में नहीं हो सकता है, हमें आज अपने जुए को ग्रहण करने का निमंत्रण देते हैं, यह कहते हुए कि उनका जुआ सहज है और उनका बोझ हल्का। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें, जिन्होंने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के जीवन को देखा, उनकी बातों को सुना और चुपचाप अपने हृदय में उनकी बातों को धारण करते हुए सीखा। वे हमें भी नम्रता और दीनता के भाव में अपने बेटे से सीखने में मदद करें।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें आज 4 जुलाई की सुबह विमान यात्रा कर दक्षिण इटली के द्वीप लंपेदूसा करीब 9 बजे पहुंचे और इस इलाके में अपना प्रेरितिक दौरा शुरू किया, जो अफ्रीका से समुद्र के रास्ते यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए लैंडिंग पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। हवाई अड्डे पर स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा का स्वागत किया। संत पापा सबसे पहले द्वीप के कब्रिस्तान गए, जहां एक ऐसी जगह भी है जहां समुद्र में अपनी जान गंवाने वालों की कब्रें हैं। कुछ देर मौन प्रार्थना करने के बाद संत पापा गेटवे टू यूरोप गए, जो एक कला स्मारक और उन प्रवासियों की याद में बनाया गया है जो यूरोप पहुंचने की कोशिश में मारे गए। इसके बाद संत पापा फाउलोरो पियर तट गए, यहाँ प्रवासियों को उतारा जाता है। संत पापा एक प्लाक को आशीर्वाद दिया जो संत पापा फ्रांसिस को समर्पित है। वहाँ उन्होंने कुछ प्रवासियों से मुलाकात की। इसके बाद संत पापा एरिना स्पोर्ट्स फील्ड गए, वहाँ लंपेदूसा के महापौर ने संत पापा का स्वागत किया। संत पापा ने महापौर के अभिवादन के जवाब में वहाँ उपस्थित लंपेदूसा वासियों का अभिवादन करते हुए संदेश दिया। संत पापा ने कहा, श्रीमान महापौर, महामान्यवर, जाने माने अधिकारियों, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं लंपेदूसा और लिनोसा म्युनिसिपालिटी की तरफ से महापौर को उनके अभिवादन के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं आप सभी को आपके स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। यह बात कि आपने फाउलोरो पियर का नाम संत पापा फ्रांसिस के नाम पर रखा है, यह उस रिश्ते की निशानी है जो मेरे पूर्ववर्ती ने आपके समुदाय और हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों के साथ बनाया था। संत पापा आपके लिए इस बहुत मुश्किल समय में आपके करीब रहे हैं और आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि संत पापा आपके साथ हैं, आपका साथ देते हैं और आपको हिम्मत देते हैं। मैं भाषण देने नहीं आया हूं, बल्कि पवित्र यूकरिस्त मनाने आया हूं, जो हमारे बीच ख्रीस्त की मौजूदगी का सबसे बड़ा संकेत है। यीशु का रोटी तोड़कर खुद को देने का इशारा हमारी रोजाना की मदद और साझा काम को मतलब और ताकत देता है। हाँ, यह एक ऐसी जगह है जहाँ इशारे शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते इशारों के लिए दिल की जरूरत होती है। हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम ख्रीस्त से वह प्यार पा सकें जो सिर्फ वही हमें दे सकते हैं, ताकि आज और कल की दुनिया सबके लिए ज्यादा मानवीय हो सके। धन्यवाद। कुछ प्रवासियों के साथ मुलाकात करने के बाद संत पापा एरिना खेल मैदान की ओर पवित्र मिसा का अनुष्ठान करने के लिए आगे बढ़े।
1: अपने उपदेश में संत पापा ने कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमेशा हमसे पहले प्यार करते हैं। सागर की सुंदरता, यह द्वीप एवं आपके चेहरे उनकी इस पहल की झलक है। प्यार हमसे पहले आता है, हमें घेरता और हमें एक साथ लाता है। मैं पोप फ्रांसिस के पदचिन्हों पर चलते हुए आपसे मिलने का मौका मिलने के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 8 जुलाई 2013 को संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहली यात्रा के लिए लंपेदूसा जाने का फैसला किया था। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेरितों ने भूमध्य सागर की

ईश्वर का वचन हमेशा प्रासंगिक है और हमें एक बातचीत के लिए प्रेरित करता है जिससे हम परिवर्तित होकर निकलते हैं, तो फिर हम उनके प्यार का जवाब कैसे दें जिसने हमसे पहले प्यार किया है। संत पापा ने कहा, आज लंपेदूसा एवं लिनोसा एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर हैं जो यरूशलेम से यरीहो जाता था। यहाँ आपने सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों इंसानों को लुटेरों के हाथों पड़ते देखा है जिन्होंने उनसे सब कुछ छीन लिया, उन्हें बुरी तरह पीटा और उन्हें अधमरा छोड़कर चले गए। समुद्र ने कुछ लोगों की जान ले ली जो अपनी उम्मीद की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी हम उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं जो हमें उन लोगों से कम चुनौती नहीं देते जिन्हें ध्यान एवं मदद की जरूरत है। सचमुच किसी भी सोच विचार या वैचारिक मान्यता से पहले उन लोगों से मिलना जो हमारे सामने हैं जिनका सब कुछ छीन लिया गया है, हमें उनके करीब आने के लिए कहता है। संत पाप ने अप्रवासियों की मदद करने वाले लोगों को संबोधित कर कहा, मैं आप लोगों को धन्यवाद देने आया हूँ उस एकात्मकता के लिए जिसको आप में से बहुतों ने दिखाई है। दया का चमत्कार एक बार फिर हुआ है, उन्होंने उन्हें देखा और उन पर दया की। यह एक आंतरिक क्रांति है जो हमारे अंदर ईश्वर के दिल को सामने लाती है। पोप लियो 14वें लंपेदूसा में अपनी एक दिवसीय प्रेरित यात्रा समाप्त कर दोपहर करीब 2 बजे वापस वैटिकन लौटे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति आशा करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, सीखना मानव के जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अपने रोज दिन के जीवन में कुछ न कुछ अच्छी चीजों को और कभी कभी तो बुरी चीजों को भी सीखते हैं। इस भांति हम अपने में जिन चीजों को सीखते और उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं, वही चीजें हमें सफलता की मंजिल की ओर ले चलती हैं, जहां हम अपने जीवन में संतुष्टि, आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 14वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार में यीशु स्वयं हमें अपने जीवन से सीखने का निमंत्रण देते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें, हम अपने जीवन में किन किन चीजों को सीखने की चाह रखते हैं? हमारा सीखना क्या हमें ईश्वर के लिए और दूसरों के लिए एक अच्छा मानव बनने को मदद करता है? हमारे जीवन में सीखने का क्रम किन किन बातों पर निर्भर करता है?
1: यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का।
0: श्रोताओं, ईश्वर के जीवनदायी वचन हमें अपने जीवन में नम्रता में बने रहने को मदद करे, क्योंकि नम्रता उस उपजाऊ भूमि की भांति है जहां हम किसी भी फसल की खेती सहज और सुगमता से कर सकते हैं। श्रोताओं, नबी जकराया के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें यरूशलेम की प्रजा को उल्लास में जय जयकार करने को कहता है, क्योंकि उसके पास मुक्तिदाता अपनी नम्रता में आने वाले हैं। वे राजा हैं, लेकिन दुनियावी राजा की भांति नहीं जो शाही अंदाज में अपने लोगों के पास आते हों, बल्कि वे गधे में सवारी करते हुए अपनी दीनता और अति विनम्रता में अपने लोगों के पास आते हैं। वे अपने बीच से राज शाही ठाठ बाट को दूर करेंगे, जो इफ्राइम के रथ और यरूशलेम में युद्ध के घोड़ों स्वरूप व्यक्त किया गया है। वे अपने लोगों के मध्य शांति की स्थापना करने आते हैं। श्रोताओं, आज का पहला पाठ हमारे लिए अपने ईश्वर के दिव्य मनोभाव को व्यक्त करता है, जो अपनी प्रजा के खातिर अपने में नम्र और दीनता में प्रस्तुत होते हैं। वे अपनी प्रजा, जिसे वे भेंट करने आते हैं, अपने को उनके जीवन की परिस्थितियों और मनोभावों के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे अपनी सहजता से उनके संग भेंट कर आनंदित हो सकें। दुनिया का कौन ऐसा राजा है जो अपने लोगों की भांति ही अपने को निर्धन और शक्तिहीन बना लेता है? निश्चित ही यह और कोई नहीं बल्कि सर्वोच्च शक्तिशाली संपन्न यीशु ख्रीस्त हैं। यह मानव के खातिर उनकी दरिद्रता और शक्तिहीनता है, जो प्रेम और आज्ञाकारिता को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा हम सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतः वह जीवनदायी प्रभु हमें अपने मनोभावों को धारण करने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने मानवीय स्वभाव को जानने, समझने और उससे ऊपर उठने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। संत पौलुस कहते हैं कि हम सबों में मसीह का आत्मा निवास करता है, वह आत्मा जो ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया। उस आत्मा का हमारे जीवन में निवास करना हमें भी अपने जीवन की कमजोरियों से ऊपर उठने को मदद करता है। मानव शरीर के रूप में हम अपने जीवन में बहुत सारी अच्छाइयों के साथ कई बुराइयों को भी वहन करते हैं, जिसमें वासना एक प्रमुख बुराई है। यह वासना हमें शारीरिक सुख तक ही सीमित कर देती है, जो हम में से हर किसी नर और नारी में एक कमजोरी है। अपने शरीर की वासनाओं पर अपनी शक्ति से हम विजयी हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए हमें उस आत्मा से जुड़ने और उसे पहचानने की जरूरत है, जिसका पान हमें पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में कराया गया है। अपने शारीरिक वासना के कारण हम स्वयं अपने में गिरते और मर जाते हैं। वहीं इस वासना से ऊपर उठने हेतु हमें नम्रता में अपने मानवीय स्वभाव को स्वीकारने की जरूरत है कि हम अपने में कमजोर और क्षण भंगुर हैं, जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में टूटकर बिखर सकते हैं। अपने को ईश्वर के उस आत्मा के लिए खोलना हमें अपनी कमजोरी में मजबूती प्रदान करती है, जहां हम अपने मानवीय जीवन के रहस्य और सच्चाई को अच्छी तरह समझते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने यीशु को अपने पिता ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए सुना, क्योंकि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उन्होंने ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। यहाँ हम हमेशा की तरह मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त को हम सबों के लिए प्रार्थना करते हुए पाते हैं, जो हमारे लिए उनके प्रेम को प्रकट करता है, उसी भांति जैसे कि हम स्वयं उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हम सच्चे मन और दिल से प्रेम करते हैं। श्रोताओं, यीशु अपने पिता की शिक्षा को सुनने वालों और उसे अपने हृदय मन और दिल से ग्रहण करने वालों के लिए, नम्रता दीनता और दरिद्रता में बने रहने वालों के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। यह इसलिए कि यीशु ख्रीस्त दीन दुखियों और गरीबों में स्वयं अपने हृदय के मनोभावों को पाते हैं। अपने पिता को धन्यवाद देते हुए यीशु ख्रीस्त आज हम सभी सुनने वालों को अपने मनोभावों से वाकिफ कराते हैं, यह कहते हुए कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। श्रोताओं, सीखना और सिखाना सिर्फ उसी के लिए संभव और एक तरह से आसान होता है जो अपने स्वभाव से नम्र और दीन है, क्योंकि ये दो गुण किसी भी व्यक्ति के हृदय के खुलेपन को व्यक्त करता है। अपने जीवन में सीखने के क्रम में भारी चीजों से हम स्वतः उब जाते हैं, लेकिन यीशु ख्रीस्त जिनसे बड़ा कोई भी शिक्षक हमारे लिए इस दुनिया में नहीं हो सकता है, हमें आज अपने जुए को ग्रहण करने का निमंत्रण देते हैं, यह कहते हुए कि उनका जुआ सहज है और उनका बोझ हल्का। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें, जिन्होंने अपने बेटे यीशु ख्रीस्त के जीवन को देखा, उनकी बातों को सुना और चुपचाप अपने हृदय में उनकी बातों को धारण करते हुए सीखा। वे हमें भी नम्रता और दीनता के भाव में अपने बेटे से सीखने में मदद करें।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें आज 4 जुलाई की सुबह विमान यात्रा कर दक्षिण इटली के द्वीप लंपेदूसा करीब 9 बजे पहुंचे और इस इलाके में अपना प्रेरितिक दौरा शुरू किया, जो अफ्रीका से समुद्र के रास्ते यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए लैंडिंग प्वाइंट के तौर पर जाना जाता है। हवाई अड्डे पर स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा का स्वागत किया। संत पापा सबसे पहले द्वीप के कब्रिस्तान गए, जहां एक ऐसी जगह भी है जहां समुद्र में अपनी जान गंवाने वालों की कब्रें हैं। कुछ देर मौन प्रार्थना करने के बाद संत पापा गेटवे टू यूरोप गए, जो एक कला स्मारक और उन प्रवासियों की याद में बनाया गया है जो यूरोप पहुंचने की कोशिश में मारे गए। इसके बाद संत पापा फाउलोरो पियर तट गए, यहाँ प्रवासियों को उतारा जाता है। संत पापा एक प्लाक को आशीर्वाद दिया, जो संत पापा फ्रांसिस को समर्पित है। वहाँ उन्होंने कुछ प्रवासियों से मुलाकात की। इसके बाद संत पापा एरिना स्पोर्ट्स फील्ड गए, वहाँ लंपेदूसा के महापौर ने संत पापा का स्वागत किया। संत पापा ने महापौर के अभिवादन के जवाब में वहां उपस्थित लंपेदूसा वासियों का अभिवादन करते हुए संदेश दिया। संत पापा ने कहा, श्रीमान महापौर, महामान्यवर, जाने माने अधिकारियों, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं लंपेदूसा और लिनोसा म्युनिसिपालिटी की तरफ से महापौर को उनके अभिवादन के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं आप सभी को आपके स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। यह बात कि आपने फाउलोरो पियर का नाम संत पापा फ्रांसिस के नाम पर रखा है, यह उस रिश्ते की निशानी है जो मेरे पूर्ववर्ती ने आपके समुदाय और हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों के साथ बनाया था। संत पापा आपके लिए इस बहुत मुश्किल समय में आपके करीब रहे हैं और आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि संत पापा आपके साथ हैं, आपका साथ देते हैं और आपको हिम्मत देते हैं। मैं भाषण देने नहीं आया हूं, बल्कि पवित्र यूकरिस्त मनाने आया हूं, जो हमारे बीच ख्रीस्त की मौजूदगी का सबसे बड़ा संकेत है। येसु का रोटी तोड़कर खुद को देने का इशारा हमारी रोजाना की मदद और साझा काम को मतलब और ताकत देता है। हाँ, यह एक ऐसी जगह है जहाँ इशारे शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते इशारों के लिए दिल की जरूरत होती है। हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम ख्रीस्त से वह प्यार पा सकें जो सिर्फ वही हमें दे सकते हैं, ताकि आज और कल की दुनिया सबके लिए ज्यादा मानवीय हो सके। धन्यवाद। कुछ प्रवासियों के साथ मुलाकात करने के बाद संत पापा एरिना खेल मैदान की ओर पवित्र मिसा का अनुष्ठान करने के लिए आगे बढ़े।
1: अपने उपदेश में संत पापा ने कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमेशा हमसे पहले प्यार करते हैं। सागर की सुंदरता, यह द्वीप एवं आपके चेहरे उनकी इस पहल की झलक है। प्यार हमसे पहले आता है, हमें घेरता और हमें एक साथ लाता है। मैं पोप फ्रांसिस के पद चिन्हों पर चलते हुए आपसे मिलने का मौका मिलने के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 8 जुलाई 2013 को संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहली यात्रा के लिए लंपेदूसा जाने का फैसला किया था। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेरितों ने भूमध्य सागर की यात्रा की थी और इसके द्वीपों एवं तटों के निवासियों के आतिथ्य का अनुभव किया था। सुसमाचार ऐसे जगहों में गूंजता है जहां लोग मिलते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते, उनके जीवन आपस में जुड़ते और विभिन्न संस्कृतियां संवाद में संलग्न होती हैं। हालांकि यह शांत हो जाता है जब प्रत्येक व्यक्ति संपर्क से बचने और आदान प्रदान को काटने के लिए खुद को एक द्वीप बना लेता है। इस अर्थ में भले समारी का दृष्टांत, जिससे हमने सुना है, एक ऐसी कहानी का वर्णन करता है जो हमसे बात करती है। विश्वपत्र फ्रतेली तुत्ती ने हमें उन चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक परिस्थितियों के आलोक में इसकी पुनः जांच करने में मदद की है जिनमें हम खुद को पाते हैं। ईश्वर का वचन हमेशा प्रासंगिक है और हमें एक बातचीत के लिए प्रेरित करता है जिससे हम परिवर्तित होकर निकलते हैं। तो फिर हम उनके प्यार का जवाब कैसे दें जिसने हमसे पहले प्यार किया है? संत पापा ने कहा, आज लंपेदूसा एवं लिनोसा एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर हैं जो यरूशलेम से यरीको जाता था। یہاں آپ نے صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں انسانوں کو لٹیروں کے ہاتھوں پڑتے دیکھا ہے، جنہوں نے ان سے سب کچھ چھین لیا، انہیں بری طرح پیٹا اور انہیں ادھمرا چھوڑ کر چلے گئے۔ سمندر نے کچھ لوگوں کی جان لے لی جو اپنی امید کی منزل تک نہیں پہنچ پائے، پھر بھی ہم ان کی اپستھتی محسوس کرتے ہیں جو ہمیں ان لوگوں سے کم چنوتی نہیں دیتے جنہیں دھیان ایوم مدد کی ضرورت ہے۔ سچ مچ کسی بھی سوچ وچار یا ویچارک مانیتا سے پہلے ان لوگوں سے ملنا جو ہمارے سامنے ہیں، جن کا سب کچھ چھین لیا گیا ہے، ہمیں ان کے قریب آنے کے لیے کہتا ہے۔ سنت پاپا نے اپرواسیوں کی مدد کرنے والے لوگوں کو سمبودھت کر کہا، میں آپ لوگوں کو دھنیواد دینے آیا ہوں اس ایکاتمکتا کے لیے جس کو آپ میں سے بہتوں نے دکھائی ہے۔ دیا کا چمتکار ایک بار پھر ہوا ہے، انہوں نے انہیں دیکھا اور ان پر دیا کی۔ یہ ایک آنترک کرانتی ہے جو ہمارے اندر ایشور کے دل کو سامنے لاتی ہے۔ پوپ لیو چودھویں لمپیدوسا میں اپنی ایک دیوسیہ پریرت یاترا سماپت کر دوپہر قریب 2 بجے واپس ویٹیکن لوٹے، اور اسی کے ساتھ ہندی پرسارن سماپت ہوا۔ اب تمل میں پرسارن ہوں گے۔ نمسکار، آئیے ہم مل کر سنت پاپا کے ساتھ چلیں۔ سنت پاپا کی پریرتائی شانتی آشا کرونا میں مدد کریں، سنت پاپا کا سمرتھن کریں، سنت پیترس کے پنیہ کارے ہیتو دان کریں۔ ویب سائٹ www.ovolodisanpietro.va پر ضرور جائیں۔

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: अमृत को कामयाई करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है।
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
2: जैसे

0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: हे
1: के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कैथोलिक कलीसिया से विच्छेद एवं पुनः वापसी पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। लेफेब्र विवाद 38 साल बाद फिर हुआ, यह एक मुश्किल इतिहास है, एक दर्दनाक घटना जिसमें दो गंभीर दरारें आई हैं, जिनकी वजह से महाधर्मदोष मास से लेफेब्र द्वारा बनाई गई संत पाप पियूस 10वें की आज की सोसाइटी ने खुद को पोप एवं रोम की कलीसिया से अलग कर लिया है। यह बात वैटिकन संचार विभाग के संपादक के निदेशक आंद्रिया तोर्नेल्ली ने अपने एक लेख में लिखी। कैथोलिक कलीसिया में एक नए विभाजन की आशंका जताते हुए पोप लियो 14वें ने 29 जून को संत पियूस 10वें की आज के सोसाइटी के सुपीरियर जनरल को एक पत्र भेजा था और कहा था कि परमधम पीठ के आदेश के बिना 1 जुलाई की सुबह स्विट्जरलैंड के इकोन में होने वाला 4 नए धर्मदक्षों के अभिषेक में आगे न बढ़ें। पोप लियो ने लिखा, ख्रिस्ते प्यार से भरकर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और पूरे दिल से आग्रह करता हूँ, कृपया वापस आइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप विश्वासों की आध्यात्मिक भलाई के बारे में ध्यान से सोचें, क्योंकि आप जो फूट डालने वाला कृत्य करने वाले हैं वह उन्हें उन संस्कारों को वैध एवं कुछ मामलों में मान्य रूप से ग्रहण करने से वंचित कर देगा जिन्हें वे प्यार करते हैं और अपनी पौत्रता के लिए लेना चाहते हैं। इसके बावजूद स्विट्जरलैंड के संत पियूस 10वें की आज के सोसाइटी के मुख्यालय में धर्मदक्ष अल्फोंसो दी कलारेत्ता और धर्मदक्ष बर्नार्ड फेल्ले ने धर्मदक्षों के अभिषेक की अध्यक्षता की और सुपीरियर जनरल ने घोषणा की कि इस काम के लिए लगाई गई किसी भी सजा या निंदा की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने अभिषेक को अपनी सोसाइटी की निरंतरता एवं जिंदा रहने के लिए जरूरी बताया, जबकि परमधम पीठ ने बातचीत की कोशिश की। इस तरह 1 जुलाई को 4 धर्मदक्षों के अभिषेक के साथ ही संत पियूस 10वें की आज के सोसाइटी रोम की कलीसिया से अलग हो गए। संत पापा पॉल षष्ठम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की बड़ी कोशिशों एवं संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा लगाए गए एक बहिष्कार को हटाने के फैसले एवं पोप फ्रांसिस द्वारा दी गई सुविधाओं और परमाध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ किए गए गैर कानूनी अभिषेक के कारण सोसाइटी एक बार फिर रोम की कलीसिया से अलग हो गई। 1 जुलाई को हुई दरार के गंभीर नतीजे न केवल महाधर्मदक्ष लेफेब्रे के धर्मदक्षों एवं पुरोहितों के लिए बल्कि विश्वासियों के लिए भी है, क्योंकि जैसा कि धर्म के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के व्याख्यात्मक नोट में कहा गया है कि आज के सोसाइटी के पुरोहित गैर कानूनी तरीके से संस्कार देते हैं और उनके द्वारा दिया गया पाप स्वीकार संस्कार एवं शादी संस्कार अमान्य है। द्वितीय वैटिकन महासभा के दौरान फ्रेंच महाधर्मदर्श मार्सेल लेफेब्रे ने कुछ सुधारों का विरोध करने वाले अल्पमत होने के बावजूद धर्म विधि पर संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर घोषणा दोनों पर हस्ताक्षर किए। 1970 में इकोन में संत पापा पियूस 10वें की सोसाइटी की स्थापना के बाद महाधर्मदर्श लेफेब्रे ने नए मिस्सा ग्रंथ के अनुसार पौत्र मिस्सा अर्पित करने से इनकार कर दिया और 1974 में उन्होंने महासभा के सुधारों को कलीसिया के लिए नुकसानदायक नई पद्धति कहा। धर्म प्रांत ने सोसाइटी से अपनी मान्यता वापस ले ली, लेकिन संत पापा पॉल षष्ठम ने बातचीत की मांग की और सेमिनरी को बंद करने का अनुरोध किया। बार बार मना करने के बाद महाधर्मदर्श लेफेब्रे को याजक पद से निलंबित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करना जारी रखा। 1976 में कस्तेल गंदोल्फो में संत पापा पॉल षष्ठम के साथ मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। संत पापा ने दार्शनिक जीन ग्विटन के साथ अपने परमाध्यक्ष पद के पहले सच्चे क्रूस का अपना दर्द साझा किया, हालांकि उनका इरादा गैर सामुदायिकता को औपचारिक बहिष्कार में बदलने का नहीं था। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के चुनाव के साथ लेफेब्रे ने ज्यादा खुलापन दिखाया। 1980 में उन्होंने घोषणा की कि उन्हें नए परमाध्यक्ष की वैधता पर कोई शक नहीं है। अप्रैल 1988 में कार्डिनल जोसेफ रात्सिंगर ने महाधर्मदर्श के साथ 3 दिन की बातचीत की अगुवाई की और एक सामान्य प्रोटोकॉल पर पहुंचे, जिस पर 5 मई को हस्ताक्षर किया गया। संत पापा पियूस 10वें की सोसाइटी ने कलीसिया एवं परमाध्यक्ष के प्रति वफादारी का वादा किया।
महासभा की शिक्षा को स्वीकार किया और संत पापा पौ षष्ठम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के रीति रिवाजों के अनुसार पौत्र मिस्सा की वैधता को मान्यता दी। इसमें याजकीय सोसाइटी से एक धर्मदक्ष के अभिषेक का भी इंतजाम किया गया। इस तरह सब कुछ तय लग रहा था, लेकिन 6 मई 1988 को महाधर्मदक्ष लेफेब्रे ने समझौता वापस ले लिया और बिना किसी परमाध्यक्ष आदेश के नए धर्मदक्षों के अभिषेक का अपना इरादा बताया। उन्हें डर था कि रोम याजकीय सोसाइटी के अंदर से उम्मीदवारों को नहीं चुनेगा। एक और मीटिंग एवं कार्डिनल रात्सिंगर के टेलीग्राम के बाद, जिसमें क्रिस्ट एवं उनकी कलीसिया के प्यार के लिए याचना की गई थी कि वे अभिषेक को छोड़ दें, 30 जून 1988 को महाधर्मदक्ष लेफेब्रे ने ब्राजील के धर्मदक्ष अंतोनियो दी कास्त्रो मेयर के साथ मिलकर 4 नए धर्मदक्षों का अभिषेक किया। लेफेब्रियन सैद्धांतिक स्पष्टता की कमी का हवाला देते हैं और यह मांग करते रहे हैं कि कलीसिया महासभा के कुछ हिस्सों को छोड़ दे। 2 फरवरी 2026 को संत पापा पियूस 10वें की सोसाइटी ने 1 जुलाई के लिए नए धर्मदक्षों के अभिषेक की घोषणा की। 12 फरवरी को याजकीय सोसाइटी के सुपीरियर फादर डेविड पालियारानी का रोम में कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस ने स्वागत किया। बातचीत की अपील एवं बुलावे के बावजूद लेफेब्रियंस आगे बढ़े और एक नया बंटवारा कर दिया, लेकिन कार्तिक कलीसिया अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसने अपना द्वार खुला रखा है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग ने दुनिया भर के धर्मदक्षों को एक संदेश भेजा है, जिसमें बताया गया है कि उन लोगों का स्वागत कैसे किया जाए जो संत पियूस 10वें की याज के सोसाइटी को छोड़ने और रोम की कलीसिया में वापस लौटने का फैसला करते हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्तिक कलीसिया से विच्छेद एवं उसमें पुनः वापसी पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत कर रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका मिलन। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, स्नेह, आत्मीयता, त्याग, उत्सर्ग, सेवा, उदारता, क्षमा आदि अनेकों गुणों पर दाम्पत्य जीवन की नींव लगती है। एक तरफ सुख के साधनों के साथ स्नेह, प्रेम और आत्मीयता पूर्ण भावनाएं परिवार को स्वर्ग बना देती है, तो दूसरी तरफ पति पत्नी की परस्पर आलोचना, एक दूसरे के प्रति कट्टरता और अविश्वास की भावना भी गृहस्थी को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। जब पति पत्नी एक दूसरे के चरित्र, व्यवहार, रहन सहन पर संदेह करने लगते हैं, तो पारस्परिक मधुर संबंधों के बीच गहरी खाई पैदा हो जाती है और वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इससे दाम्पत्य जीवन की सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसका असर बच्चों को भुगतना पड़ता है। वे बचपन से ही माता पिता को सिर्फ झगड़ते हुए देखते हैं। एक लड़का जिसका पालन पोषण ऐसे माहौल में होता है, वह बड़ा होकर क्रोध करने वाला मनुष्य बन जाता है। उसी तरह एक लड़की जिसकी परवरिश ऐसे माहौल में होती है, तो वह बड़ी होकर कड़वी बातें बोलने वाली और गुस्सैल स्त्री बन जाती है। झगड़ते माँ बाप को देखकर वे परिवार बसाना या शादी करने के बारे भी सोचना नहीं चाहते। लड़के प्रायः घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे दंपति अपना दाम्पत्य जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। अतः समय रहते संभल जाएं, पति और पत्नी अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, क्योंकि नम्रता, सहिष्णुता और उदारपूर्ण क्षमा से ही दाम्पत्य जीवन निभता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका मिलन।
1: आप बाजार जा रहे हैं?
2: क्यों, ये जरूरी है क्या कि मैं तैयार हूँ? तो मतलब है मैं बाजार ही जा रहा हूँ, क्या मैं कहीं और नहीं जा सकता?
1: तो मुझे क्या पता कि आप बाजार नहीं बल्कि कहीं और जा रहे हैं।
2: तो फिर पहले पूछना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं।
1: वह भी पूछ कर देख चुकी हूँ। पता है आपने क्या कहकर मुझे डांटा कि तुम्हें क्या पंचायत है, मैं कहीं भी जाऊँ?
2: तो आदमी का मूड देखकर पूछना चाहिए ना।
1: वाह, ये भी खूब रही। पहले मैं इनका मूड देखूं, फिर जाकर कुछ पूछूं, वो भी मूड सही होने पर।
2: तुमसे तो बाल की खाल निकलवा लो बस। अरे अगर इतना ही दिमाग अपना तुम अब चलाती हो और लगाती हो, तो बात को खुद ही समझ लो है? कि किसी और को समझाने की जरूरत ही ना पड़े।
1: हाँ हाँ, सारी समझदारी का ठेका तुमने ही जो ले रखा है ना।
2: आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तुम।
1: और आप तो जैसे मुंह में दही जमा कर बैठे रहते हो।
2: अब अपनी बकवास बंद करोगी तुम?
1: क्या, आप कहें तो बोलना और मैं कहूँ तो बकवास है।
2: आजकल तुम्हारा मुंह तो कैंची से भी तेज चलने लगा।
1: अगर किसी बात का जवाब देना मुंह चलाना है, तो फिर इस दुनिया में सारे लोग मुंह चलाते हैं।
2: एक जवान लड़की की माँ हो गई हो, लेकिन पति की इज्जत करना अब तक नहीं सीखा तुमने।
1: आपने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर सिखाते तो क्या मैं सीखती नहीं?
2: तुम न केवल मुंहजोर हो बल्कि बेशर्म भी हो।
1: अब जो भी कुछ हूँ सब आप ही की तो देन हूँ।
2: तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
1: तो मुझे कौन सा शौक है आपसे बात करने का?
3: मम्मी, शाम को क्या बनाना है?
1: जो तुझे अच्छा लगे बना लेंगे।
3: अरे मुझे बनाना होता तो क्या मैं आपसे पूछती?
1: देख, अगर भिंडी अच्छी हो तो साफ कर ले, वही बना लेंगे।
3: हाँ ठीक है, अगर आज नहीं बनी तो कल तक तो पक्का सड़ जाएगी।
1: तेरे पापा से बड़ी बड़ी बातें सुन लो, दूसरों को ज्ञान बांटते फिरेंगे, लेकिन खुद ज्ञान से गरीब ही हैं। अब बता साक्षी, कल ही वे सब्जी लाए और आज सब्जी खराब हो गई। सब्जी लाना तो आता नहीं।
3: अब सब्जी तो है मम्मी, कोई घास फूस तो नहीं।
1: लेकिन सब्जी के नाम पर क्या उठा कर लाए हैं, सड़ी गली सब्जी, क्या आंख बंद करके खरीद रहे थे?
3: छोड़ो भी मम्मी, क्या लेकर बैठ गई हो आप?
1: अरे अगर अभी मैं ऐसी सब्जी ले आती तो तेरे पापा तो सारा घर सिर पर उठा लेते, अपनी चलाने में तो सबसे आगे हैं।
3: जैसे पापा के बारे में आपके विचार हैं, वैसे ही पापा आपके बारे में सोचते होंगे, इसीलिए तो आजकल आप दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा है।
1: झगड़ती मैं नहीं बेटा, तेरे पापा ही शुरू करते हैं।
3: और पापा से पूछो तो पापा आपका नाम लेते हैं। पता नहीं आप दोनों का बुढ़ापा साथ में कैसे गुजरेगा।
1: अगर उनके रंग ढंग नहीं सुधरे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और पढ़े रहे फिर यहाँ अकेले और करते रहे मनमानी। कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा।
3: अब तो भगवान ही मालिक है आप दोनों का।
2: साक्षी, बेटी तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है?
3: साफ साफ कहूँ तो अच्छी नहीं चल रही, बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही।
2: क्यों, ऐसी क्या बात है? अगर किसी तरह की परेशानी है तो कोचिंग क्लास चली जा।
3: अगर कुछ समझने में कठिनाई होती तो मैं कोचिंग क्लास चली जाती, लेकिन परेशानी तो आपसे और मम्मी से है।
2: हम दोनों से? हम दोनों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उससे तेरी पढ़ाई खराब हो रही?
3: आप दोनों की रात दिन चलने वाली किचकिच। पापा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ और सब कुछ मैं भी समझने लगी हूँ, लेकिन फिर भी आप दोनों बिना मेरी परवाह किए झगड़ने लग जाते हैं?
2: हाँ बेटा, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं।
3: बिना इस बात की परवाह किए कि इस आप दोनों के झगड़ों का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
2: सच है बेटी, हम दोनों ही स्वार्थी हैं।
3: आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि जब मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आप दोनों कैसे रहेंगे?
2: हाँ बेटी, ये बात भी है।
3: और अब सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी।
2: ये तूने क्या सोच लिया है बेटी?
3: हाँ पापा, अब दोनों को ही हर समय झगड़ते देख मैंने यह फैसला किया है कि जब आदमी औरत में आप दोनों की तरह झगड़ा ही होता रहेगा तो फिर शादी करने का क्या फायदा।
2: ये तेरी गलत फहमी है बेटा कि शादी के बाद पति पत्नी केवल झगड़ते ही रहते हैं।
3: मगर मैं तो बचपन से लेकर अब तक यही देखती आ रही हूँ।
2: मैं तुझसे वादा करता हूँ बेटा कि मैं अब तेरी मम्मी से कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा।
3: गुड, यह हुई ना अच्छे पापा वाली बात।
2: लेकिन तेरी शादी वाली बात
3: अभी मम्मी को भी सुनाना बाकी है।
4: यार, तुम्हारी सारी बातें सुनकर मैं तो तुम्हें यही सलाह दे सकता हूँ कि जैसे तुमने बेटी से माफी मांगकर बात को खत्म करने की कोशिश की है, वैसे ही भाभी से भी माफी मांगकर बात को खत्म ही कर डालो।
2: मगर यार, क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं उससे माफी मांगू?
4: और जब तुम भाभी से झगड़ा करते थे तब क्या अच्छा लगता था?
2: अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी भाभी से साहब माफी मांग ली और उसके बाद भी अगर उसने झगड़ा किया तो?
4: भाभी तुमसे झगड़ा नहीं करेगी। माफी में वो जादू होता है कि पहले ना करने वाला भी हाँ कर देता है। तुम जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो।
2: ठीक है यार, आजमा कर देखता हूँ। सुनो सुजाता, मैं आज तक अपने किए सभी बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ।
5: ये आप क्या कह रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजियाँ की है, आपका अपमान किया है, मुझे माफ कर दीजिए।
2: मैं अब तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा।
5: और मैं भी आपको पति का पूरा सम्मान और प्रेम दिया करूँगी।
3: इस घर में मैं यही सब कुछ चाहती थी, मम्मी पापा का मिलन।
5: हमारी ओर से अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी बेटा।
3: पता है, जब मैं दूसरों के मम्मी पापा को प्यार से बातें करते, हंसी मजाक करते देखती थी तो मैं यही सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा ऐसे क्यों नहीं रहते।
2: अब तेरे मम्मी पापा भी औरों के मम्मी पापा से अलग नहीं है बेटी। इस घर में अब झगड़े के स्वर नहीं बल्कि खुशियों की किलकारियां गूंजेंगी।
5: मैं तेरे पापा का ऐसा ही व्यवहार देखना चाहती थी।
2: और मैं तेरी मम्मी का यही रूप देखना चाहता था।
3: इस घर में अब सब केवल खुशी के रूप में ही दिखाई देंगे, क्योंकि मम्मी पापा का मिलन जो हो गया है।
0: मिलन। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे डॉक्टर भावना प्रधान, दिव्या शूलिया, निर्विकार मूल्य और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
6: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कैथोलिक कलीसिया से विच्छेद एवं पुनः वापसी पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। लेफेब्र विवाद 38 साल बाद फिर हुआ, यह एक मुश्किल इतिहास है, एक दर्दनाक घटना जिसमें दो गंभीर दरारें आई हैं, जिनकी वजह से महाधर्मदोष मार्सेल लेफेब्र द्वारा बनाई गई संत पापा पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी ने खुद को पोप एवं रोम की कलीसिया से अलग कर लिया है। यह बात वैटिकन संचार विभाग के संपादक के निदेशक आंद्रिया तोर्नेल्ली ने अपने एक लेख में लिखी। कैथोलिक कलीसिया में एक नए विभाजन की आशंका जताते हुए पोप लियो 14वें ने 29 जून को संत पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी के सुपीरियर जनरल को एक पत्र भेजा था और कहा था कि परमधम पीठ के आदेश के बिना 1 जुलाई की सुबह स्विट्जरलैंड के इकोन में होने वाला 4 नए धर्मदक्षों के अभिषेक में आगे न बढ़ें। पोप लियो ने लिखा, ख्रिस्त प्यार से भरकर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और पूरे दिल से आग्रह करता हूँ, कृपया वापस आइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप विश्वासों की आध्यात्मिक भलाई के बारे में ध्यान से सोचें, क्योंकि आप जो फूट डालने वाला कृत्य करने वाले हैं वह उन्हें उन संस्कारों को वैध एवं कुछ मामलों में मान्य रूप से ग्रहण करने से वंचित कर देगा जिन्हें वे प्यार करते हैं और अपनी पौत्रता के लिए लेना चाहते हैं। इसके बावजूद स्विट्जरलैंड के संत पियूस 10वें की आज के सोसाइटी के मुख्यालय में धर्मदक्ष अल्फोंसो दी कलारेत्ता और धर्मदक्ष बर्नार्ड फेल्ले ने धर्मदक्षों के अभिषेक की अध्यक्षता की और सुपीरियर जनरल ने घोषणा की कि इस काम के लिए लगाई गई किसी भी सजा या निंदा की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने अभिषेक को अपनी सोसाइटी की निरंतरता एवं जिंदा रहने के लिए जरूरी बताया, जबकि परमधम पीठ ने बातचीत की कोशिश की। इस तरह 1 जुलाई को 4 धर्मदक्षों के अभिषेक के साथ ही संत पियूस 10वें की आज के सोसाइटी रोम की कलीसिया से अलग हो गए। संत पापा पॉल षष्ठम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की बड़ी कोशिशों एवं संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा लगाए गए एक बहिष्कार को हटाने के फैसले एवं पोप फ्रांसिस द्वारा दी गई सुविधाओं और परमाध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ किए गए गैर कानूनी अभिषेक के कारण सोसाइटी एक बार फिर रोम की कलीसिया से अलग हो गई। 1 जुलाई को हुई दरार के गंभीर नतीजे न केवल महाधर्मदक्ष लेफेब्रे के धर्मदक्षों एवं पुरोहितों के लिए बल्कि विश्वासियों के लिए भी है, क्योंकि जैसा कि धर्म के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के व्याख्यात्मक नोट में कहा गया है कि आज के सोसाइटी के पुरोहित गैर कानूनी तरीके से संस्कार देते हैं और उनके द्वारा दिया गया पाप स्वीकार संस्कार एवं शादी संस्कार अमान्य है। द्वितीय वैटिकन महासभा के दौरान फ्रेंच महाधर्मदर्श मार्सेल लेफेब्रे ने कुछ सुधारों का विरोध करने वाले अल्पमत होने के बावजूद धर्म विधि पर संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर घोषणा दोनों पर हस्ताक्षर किए। 1970 में इकोन में संत पापा पियूस 10वें की सोसाइटी की स्थापना के बाद महाधर्मदर्श लेफेब्रे ने नए मिस्सा ग्रंथ के अनुसार पौत्र मिस्सा अर्पित करने से इनकार कर दिया और 1974 में उन्होंने महासभा के सुधारों को कलीसिया के लिए नुकसानदायक नई पद्धति कहा। धर्म प्रांत ने सोसाइटी से अपनी मान्यता वापस ले ली, लेकिन संत पापा पॉल षष्ठम ने बातचीत की मांग की और सेमिनरी को बंद करने का अनुरोध किया। बार बार मना करने के बाद महाधर्मदर्श लेफेब्रे को याजक पद से निलंबित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करना जारी रखा। 1976 में कस्तेल गंदोल्फो में संत पापा पॉल षष्ठम के साथ मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। संत पापा ने दार्शनिक जीन ग्विटन के साथ अपने परमाध्यक्ष पद के पहले सच्चे क्रूस का अपना दर्द साझा किया, हालांकि उनका इरादा गैर सामुदायिकता को औपचारिक बहिष्कार में बदलने का नहीं था। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के चुनाव के साथ लेफेब्रे ने ज्यादा खुलापन दिखाया। 1980 में उन्होंने घोषणा की कि उन्हें नए परमाध्यक्ष की वैधता पर कोई शक नहीं है। अप्रैल 1988 में कार्डिनल जोसेफ रात्सिंगर ने महाधर्मदर्श के साथ 3 दिन की बातचीत की अगुवाई की और एक सामान्य प्रोटोकॉल पर पहुंचे, जिस पर 5 मई को हस्ताक्षर किया गया। संत पापा पियूस 10वें की सोसाइटी ने कलीसिया एवं परमाध्यक्ष के प्रति वफादारी का वादा किया।
महासभा की शिक्षा को स्वीकार किया और संत पापा पौल षष्ठम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के रीति रिवाजों के अनुसार पौत्र मिस्सा की वैधता को मान्यता दी। इसमें याजकीय सोसाइटी से एक धर्मदक्ष के अभिषेक का भी इंतजाम किया गया। इस तरह सब कुछ तय लग रहा था, लेकिन 6 मई 1988 को महाधर्मदक्ष लेफेब्रे ने समझौता वापस ले लिया और बिना किसी परमाध्यक्ष आदेश के नए धर्मदक्षों के अभिषेक का अपना इरादा बताया। उन्हें डर था कि रोम याजकीय सोसाइटी के अंदर से उम्मीदवारों को नहीं चुनेगा। एक और मीटिंग एवं कार्डिनल रात्सिंगर के टेलीग्राम के बाद, जिसमें क्रिस्ट एवं उनकी कलीसिया के प्यार के लिए याचना की गई थी कि वे अभिषेक को छोड़ दें, 30 जून 1988 को महाधर्मदक्ष लेफेब्रे ने ब्राजील के धर्मदक्ष अंतोनियो दी कास्त्रो मेयर के साथ मिलकर 4 नए धर्मदक्षों का अभिषेक किया। लेफेब्रियन सैद्धांतिक स्पष्टता की कमी का हवाला देते हैं और यह मांग करते रहे हैं कि कलीसिया महासभा के कुछ हिस्सों को छोड़ दे। 2 फरवरी 2026 को संत पापा पियूस 10वें की सोसाइटी ने 1 जुलाई के लिए नए धर्मदक्षों के अभिषेक की घोषणा की। 12 फरवरी को याज के सोसाइटी के सुपीरियर फादर डेविड पालियारानी का रोम में कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस ने स्वागत किया। बातचीत की अपील एवं बुलावे के बावजूद लेफेब्रियंस आगे बढ़े और एक नया बंटवारा कर दिया, लेकिन कार्तिक कलीसिया अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसने अपना द्वार खुला रखा है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग ने दुनिया भर के धर्मदक्षों को एक संदेश भेजा है, जिसमें बताया गया है कि उन लोगों का स्वागत कैसे किया जाए जो संत पियूस 10वें की याज के सोसाइटी को छोड़ने और रोम की कलीसिया में वापस लौटने का फैसला करते हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्तिक कलीसिया से विच्छेद एवं उसमें पुनः वापसी पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत कर रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका मिलन। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, स्नेह, आत्मीयता, त्याग, उत्सर्ग, सेवा, उदारता, क्षमा आदि अनेकों गुणों पर दाम्पत्य जीवन की नींव लगती है। एक तरफ सुख के साधनों के साथ स्नेह, प्रेम और आत्मीयता पूर्ण भावनाएं परिवार को स्वर्ग बना देती है, तो दूसरी तरफ पति पत्नी की परस्पर आलोचना, एक दूसरे के प्रति कट्टरता और अविश्वास की भावना भी गृहस्थी को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। जब पति पत्नी एक दूसरे के चरित्र, व्यवहार, रहन सहन पर संदेह करने लगते हैं, तो पारस्परिक मधुर संबंधों के बीच गहरी खाई पैदा हो जाती है और वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इससे दाम्पत्य जीवन की सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसका असर बच्चों को भुगतना पड़ता है। वे बचपन से ही माता पिता को सिर्फ झगड़ते हुए

0: और पत्नी अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, क्योंकि नम्रता, सहिष्णुता और उदारपूर्ण क्षमा से ही दाम्पत्य जीवन निभता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका मिलन।
1: आप बाजार जा रहे हैं?
2: क्यों, ये जरूरी है क्या कि मैं तैयार हूँ? तो मतलब है मैं बाजार ही जा रहा हूँ, क्या मैं कहीं और नहीं जा सकता?
1: तो मुझे क्या पता कि आप बाजार नहीं बल्कि कहीं और जा रहे हैं?
2: तो फिर पहले पूछना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं।
1: वह भी पूछ कर देख चुकी हूँ। पता है आपने क्या कहकर मुझे डांटा कि तुम्हें क्या पंचायत है, मैं कहीं भी जाऊं?
2: तो आदमी का मूड देखकर पूछना चाहिए ना।
1: वाह, ये भी खूब रही। पहले मैं इनका मूड देखूं, फिर जाकर कुछ पूछूं, वो भी मूड सही होने पर।
2: तुमसे तो बाल की खाल निकलवा लो बस। अरे अगर इतना ही दिमाग अपना तुम अब चलाती हो और लगाती हो तो बात को खुद ही समझ लो, है कि किसी और को समझाने की जरूरत ही ना पड़े।
1: हाँ, सारी समझदारी का ठेका तुमने ही जो ले रखा है ना।
2: आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तुम।
1: और आप तो जैसे मुंह में दही जमा कर बैठे रहते
2: अब
1: हो।
2: अपनी बकवास बंद करोगी तुम?
1: क्या आप कहें तो बोलना और मैं कहूं तो बकवास है।
2: आजकल तुम्हारा मुंह तो कैंची से भी तेज चलने लगा।
1: अगर किसी बात का जवाब देना मुंह चलाना है तो फिर इस दुनिया में सारे लोग मुंह चलाते हैं।
2: एक जवान लड़की की माँ हो गई हो लेकिन पति की इज्जत करना अब तक नहीं सीखा तुमने।
1: आपने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर सिखाते तो क्या मैं सीखती नहीं?
2: तुम ना केवल मुंहजोर हो बल्कि बेशर्म भी हो।
1: अब जो भी कुछ हूं सब आप ही की तो देन हूं।
2: तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
1: तो मुझे कौन सा शौक है आपसे बात करने का?
3: मम्मी, शाम को क्या बनाना है?
1: जो तुझे अच्छा लगे बना लेंगे।
3: अरे मुझे बनाना होता तो क्या मैं आपसे पूछती?
1: देख, अगर भिंडी अच्छी हो तो साफ कर ले, वही बना लेंगे।
3: हाँ ठीक है, अगर आज नहीं बनी तो कल तक तो पक्का सड़ जाएगी।
1: तेरे पापा से बड़ी बड़ी बातें सुन लो, दूसरों को ज्ञान बांटते फिरेंगे लेकिन खुद ज्ञान से गरीब ही हैं। अब बता साक्षी, कल ही वे सब्जी लाए और आज सब्जी खराब हो गई। सब्जी लाना तो आता नहीं।
3: अब सब्जी तो है मम्मी, कोई घास फूस तो नहीं?
1: लेकिन सब्जी के नाम पर क्या उठाकर लाए हैं, सड़ी गली सब्जी। क्या आंख बंद करके खरीद रहे थे?
3: अब छोड़ो भी मम्मी, क्या लेकर बैठ गई हो आप?
1: अरे अगर अभी मैं ऐसी सब्जी ले आती तो तेरे पापा तो सारा घर सिर पर उठा लेते, अपनी चलाने में तो सबसे आगे हैं।
3: जैसे पापा के बारे में आपके विचार हैं वैसे ही पापा आपके बारे में सोचते होंगे, इसीलिए तो आजकल आप दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा है।
1: झगड़ती मैं नहीं बेटा, तेरे पापा ही शुरू करते हैं।
3: और पापा से पूछो तो पापा आपका नाम लेते हैं। पता नहीं आप दोनों का बुढ़ापा साथ में कैसे गुजरेगा।
1: अगर उनके रंग ढंग नहीं सुधरे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, और पढ़े रहे फिर यहाँ अकेले और करते रहे मनमानी, कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा।
3: अब तो भगवान ही मालिक है आप दोनों का।
2: साक्षी, बेटी तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है?
3: साफ साफ कहूँ तो अच्छी नहीं चल रही, बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही।
2: क्यों, ऐसी क्या बात है? अगर किसी तरह की परेशानी है तो कोचिंग क्लास चली जा।
3: अगर कुछ समझने में कठिनाई होती तो मैं कोचिंग क्लास चली जाती, लेकिन परेशानी तो आपसे और मम्मी से है।
2: हम दोनों से? हम दोनों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उससे तेरी पढ़ाई खराब हो रही है?
3: आप दोनों की रात दिन चलने वाली किचकिच। पापा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ और सब कुछ मैं भी समझने लगी हूँ, लेकिन फिर भी आप दोनों बिना मेरी परवाह किए झगड़ने लग जाते हैं?
2: हाँ बेटा, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं।
3: बिना इस बात की परवाह किए कि इस आप दोनों के झगड़ों का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
2: सच है बेटी, हम दोनों ही स्वार्थी हैं।
3: आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि जब मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आप दोनों कैसे रहेंगे?
2: हाँ बेटी, ये बात भी है।
3: और अब सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी।
2: ये तूने क्या सोच लिया है बेटी?
3: हाँ पापा, अब दोनों को ही हर समय झगड़ते देख मैंने यह फैसला किया है कि जब आदमी औरत में आप दोनों की तरह झगड़ा ही होता रहेगा तो फिर शादी करने का क्या फायदा।
2: ये तेरी गलत फहमी है बेटा कि शादी के बाद पति पत्नी केवल झगड़ते ही रहते हैं।
3: मगर मैं तो बचपन से लेकर अब तक यही देखती आ रही हूँ।
2: मैं तुझसे

0: वादा करता हूँ बेटा कि मैं अब तेरी मम्मी से कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा।
1: गुड, यह हुई ना अच्छे पापा वाली बात।
0: लेकिन तेरी शादी वाली बात?
1: अभी मम्मी को भी सुनाना बाकी है।
2: यार, तुम्हारी सारी बातें सुनकर मैं तो तुम्हें यही सलाह दे सकता हूँ कि जैसे तुमने बेटी से माफी मांगकर बात को खत्म करने की कोशिश की है, वैसे ही भाभी से भी माफी मांगकर बात को खत्म ही कर डालो।
0: मगर यार, क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं उससे माफी मांगू?
2: और जब तुम भाभी से झगड़ा करते थे तब क्या अच्छा लगता था?
0: अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी भाभी से माफी मांग ली और उसके बाद भी अगर उसने झगड़ा किया तो?
2: भाभी तुमसे झगड़ा नहीं करेगी। माफी में वो जादू होता है कि पहले ना करने वाला भी हाँ कर देता है। तुम जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो।
0: ठीक है यार, आजमा कर देखता हूँ। सुनो सुजाता, मैं आज तक अपने किए सभी बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ।
1: ये आप क्या कह रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजियां की है, आपका अपमान किया है, मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं अब तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा।
1: और मैं भी आपको पति का पूरा सम्मान और प्रेम दिया करूंगी।
3: इस घर में मैं यही सब कुछ चाहती थी, मम्मी पापा का मिलन।
1: हमारी ओर से अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी बेटा।
3: पता है, जब मैं दूसरों के मम्मी पापा को प्यार से बातें करते, हंसी मजाक करते देखती थी, तो मैं यही सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा ऐसे क्यों नहीं रहते।
0: अब तेरे मम्मी पापा भी औरों के मम्मी पापा से अलग नहीं है बेटी। इस घर में अब झगड़े के स्वर नहीं बल्कि खुशियों की किलकारियां गूंजेंगी।
1: मैं तेरे पापा का ऐसा ही व्यवहार देखना चाहती थी।
0: और मैं तेरी मम्मी का यही रूप देखना चाहता था।
3: इस घर में अब सब केवल खुशी के रूप में ही दिखाई देंगे, क्योंकि मम्मी पापा का मिलन जो हो गया है।
4: मिलन। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे डॉक्टर भावना प्रधान, दिव्या शूलिया, निर्विकार मूल्य और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
5: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।